0: मार मैं पाचो
1: इटी विनो और रेडियो पियोंग चुन के रे वेर क्वारो
0: पियोंग चुन के रे वेर क्वारो
1: बीमार
0: मैं पाचो
2: इवान लंग यू बिरो टेला काम उपेने
1: इटी विनो और रेडियो
3: Aaron, Aaron, Aaron, Aaron, Aaron, Aaron, Aaron, Aaron, Aaron.
4: Somebody told you that,
5: what up?
4: The God MC will be back soon.
5: The Akbar
4: to pull rappers back in that position.
3: It's yeah.

0: मार मैं पाचो
1: इटी विनो और रेडियो
2: डम डम नुआसे डम अफिनुआसे डॉक्टर एजी सिंह से
3: जाने पुलेक्शन.

0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो पियोम चुन के रे वेर क्वारो बिमार मैं पाचो
2: युआन लंग यू बिरोटा
1: इटी यूनियो और रेडियो।

0: तुम ये क्रेवेर क्वारो
1: बीमार मैं पाचो
0: इटी यूनियो और रेडियो पियम ये क्रेवेर क्वारो
1: बीमार मैं पाचो
0: इटी यूनियो और रेडियो

0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो यम ये करे वेर क्वारो
0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो

0: और मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो पियम ये करे वेर क्वारो
0: मार मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो

0: और मैं पाचू
1: इटीनो और रेडियो
2: Yeah, easy delivery call.
3: Rico.
4: Ruba.